0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ஆடிக்கு வாங்க, ஆடைகளுக்கு நம்ம துறையூர் ரேணுகா சில்க்ஸ் தாங்க.
4: ஜூலை 1 முதல் 5% முதல் 50% வரை தள்ளுபடி.
3: ரேணுகா சில்க்ஸ் அண்ட் ரெடிமேட்ஸ், கடைவீதி துறையூர்.
5: எஃப்எம் ரெயின்போ 102.1 இதய ராகம், 938-546-102-1 இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களோட அழகான பேர், ஊர் பேரோட என்ன புது பாட்டு பிடிக்கும், அது என்ன படம் அப்படின்னு குறுஞ்செய்தி அனுப்புங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். அதனால நிறைய நேயர்கள் அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க. வித் லவ் படத்திலிருந்து மறந்து போச்சே அந்த பாட்டை கொடுங்க அப்படின்னு மறக்காம கேட்கறாங்க. இதே ராகத்துல பெரம்பலூர் சஞ்சீவினி, சுதா, நித்யா.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: திருச்சி பண்பலை 102.1 நாளைய நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் வழங்குவோர்
4: மங்களன் மங்கள், திருச்சி மற்றும் சேலம்.
5: திருச்சி மற்றும் சேலம் மங்களன் மங்களில் அதிரடி தள்ளுபடி.
6: தங்க நகைகள் குறைந்த சேதாரத்தில் பவுனுக்கு 1200 ரூபாய் அதிரடி தள்ளுபடி.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ஆடி வந்தாலே போத்தீஸ் ஆஃபர்ஸ் தான். 5 முதல் 50% வரை தள்ளுபடி, பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் இலவசம், ஃப்ரீ கிஃப்ட் வவுச்சர்ஸும் பெறுங்கள். போத்தீஸ்.
4: பகல் பொழுதில் மனமயக்கும் பாடல்கள் மதுர கீதத்தில். அசாதாரணமான ஒரு கதைக்களம், முன்னணி கலைஞர்கள், குழந்தை நட்சத்திரங்களோட சிறப்பான நடிப்புக்கு கிடைச்ச வெற்றி படம் எங்க பாப்பா. கண்ணதாசன் வரிகள், MS விஸ்வநாதன் இசை, படத்துக்கு பலமா இருந்தது. PR பந்துலு தயாரிப்பில் 1966 வந்தது அந்த படம். இப்ப பாட்டு மதுர கீதத்துல கேட்டிருக்கிறாங்க சுகன்யா, பரத், சுஷ்மிதா ஸ்ரீ, விழிவாக்கம் குபேந்திரன், திருமழிசை கஸ்தூரி, அருணா சேகர், வெண்கரும்பூர் நேரு. பாட்டு பாடியிருக்கிறாங்க TM சௌந்தரராஜன், P. சுசீலா.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: திருச்சி எஃப்எம் ரெயின்போ 102.1 அடுத்த மின்னஞ்சல் விமர்சனம் அனுப்பியிருக்க நேயர் எஸ் லக்ஷ்மி குமரன் நகர்லிருந்து. வணக்கம். ஜூலை 2 அன்று இசைத்தூரல் தொகுத்து வழங்கிய கீர்த்திகா அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். நல்லா இருக்கு குரல், அழகா நீர்த்தியாக மின்னஞ்சல்களை வாசிக்கிறார். இரவு இசை இனிமை நிகழ்ச்சி அருமை. சகோதரர் சுரேஷ் நேயர்களிடம் அன்போடு உரையாடி விருப்ப பாடல்களை

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: நமது திருச்சி எஃப்எம் ரெயின்போ 102.1 வன மகோத்சவ வாரத்தை முன்னிட்டு நாளை காலை 8:02 திருச்சி சேலம் மங்களன் மங்கள் மாபெரும் தங்க மாளிகை வழங்கும் வனம் நமது வளம் சிறப்பு தொடர். வனங்களின் சிறப்புகளை வானொலியோடு கொண்டாடுவதில் பெருமை கொள்கிறது
4: திருச்சி மற்றும் சேலம் மங்களன் மங்களில் மாபெரும் அதிரடி தள்ளுபடி.
5: தங்க நகைகள் மிக மிக குறைந்த சேதாரத்தில் பவுனுக்கு 1200 ரூபாய் அதிரடி தள்ளுபடி.
6: அமைதியின் இடைவெளியில் இசை தொடர்கிறது இனிய ராகமாக.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ஞாபகம் வருது கேட்டு நினைஞ்சிருக்கிறீங்க, திருச்சி எஃப்எம் ரெயின்போ 102.1 நிகழ்ச்சியில நம்ம கூட பேசுறதுக்காக அடுத்த நேரம் யாரெங்க இருந்து பாக்கலாம். வணக்கம்.
4: வணக்கம். வணக்கம் மேடம்.
3: இரவு வணக்கம் சொல்றது யாரு?
4: குமுலூர்ல சரவணன்.
3: சரவணன் சார், என்ன பாடல் வேணும் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில?
4: உலகம் சுற்று அழிவில் இருந்து பச்சை கிளி மற்றும் சரவணன் சாங்.
3: ஓகேங்க, கொடுத்துடலாம். நன்றி இணைப்புல வந்ததுக்கு.
4: நன்றி மேடம்.

भोमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्पष्टा स्थविष्ठ स्थविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रदर्दनः प्रभूतस्त्रिक।